भाई जोगा सिंह कन्ना एक आवाज पई सत पौड़ी तू पै ऐसा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा सिंह फिर आंदा फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना

अजे भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझिया कि हम कोई नहीं वेचना पर अजे भी कोई टक रही है मना जरा खैर। तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह फिर आंदे फिर कन्ना आवाज खेड़ी

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तिलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नू बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने इना

अंदर असी दाखल होए हैं। तुरदे तुरदे एक महल दे अगे जाके खलो गए हैं, जिदे दरवाजे बंद ने, मानो हीरे जवाहरातां नालों भी सूक्ष्म शायद ए महल बने। इस महल दियां कंधां इन्नियां पारदर्शक ने, महल दे अंदर दी रोशनी कंधां दे विचों बाहर आके खंडां ब्रह्मंडां दे विच बैठे जीवां नूं जीवन दान दे रही है। पर दरवाजा बंद है, तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे दरवाजे दे अगे जाके खलो गए हैं। तेजस्वी पुरुष ने हाथ जोड़े ने, असां भी जोड़े ते दर्शना वास्ते इउं अरदास।

दरवाजा खुलिया तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे विच दाखल होए हैं। कुछ आत्मक मंडलों वाले लोग

0: को समझायो इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे ने संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिनू आपा सचखंड भी कहने, जिथू तुरिया सी हेमकुंट नाम दे पर्वत ते असी वापस आए, इथे आराम कीता, इथों ए बेबान तुरिया किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडलां वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनास्पति खिड़ गई, मानो आज दुनिया दा पार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगी पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया। मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारा संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपा भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

दूत नाए तेरे छड़ जाए। पूरन गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है। जिवें शहनशाह मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन। आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र अस्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नूं लोचदे हन। साहिब जी सशोभित हन, गुरु के कीर्तन हो रहे हन, रब्बी अमृत बरस रहा है। दूरों दूरों संगतां आके ऐं समाधि लाई बैठियां हन, कीर्तन विच झूम रहियां हन, जिवें पिपल दे पत्ते दी न्याई, जिवें पिपल दा पत्ता हवा रुमक रही होवे तां झूमदा है, तिवें गुरु के सिख अमृत बरस रहा है कीर्तन दा, ते फिर ए रस पुंज रहे हन, जुड़े हुए हन निरंकार दे चरणां। कीर्तन दी समाप्ति हुई, एक सिख आ पुजा जो हजूर दे चरणां विच आके बड़े सुंदर दो दुशाले लिया के अगे रखे। गरीब नवाज, आप दी बड़ी कृपा हुई है, बड़ी मेहर हुई है, ए दुशाले मैं आप दी भेटा कर सकिया। कुछ समा पहले ही आप जी दे चरणां विच दर्शना लई पहुंचना सी, इदे नाल दे मैं दो दुशाले ले सन, पर जदों मैं आ रहा सां आप जी दे वल तां रस्ते विच पठाणा ने घेर लिया।

गुजरी जी ने जदों अपने नन्ने पोतियां दी दर्द नाल वार्ता सुनी तां असह कष्ट दे सदमे नाल उन्हां दी आत्मा भी परवाज कर गई, जिस विचों ए बोल निकले कि मेरे प्यारे लाडले बच्चियो, मेरे लाल दे लालो, जरा ठहरना, मैं तुहानू लोरियां दे के ठपकियां दे के सवाउण लई तुहाडे कोल उड़ के आ रही हां। अज किथे ने ओ मरदूद मर्द जिन्हां ने चंद टकियां दी खातर अपने धर्म नूं तलांजली दे के अपनी इज्जत नूं छिके टंगिया। गंगू दी गदारी नाल जुल्मा भरे इतिहास का एक होर पन्ना भर गया। इस बकुए नाल हर आत्मा झंझोड़ी गई अते बेचैन हुए हर हिरदे विचों आप मुहारे गंगू गदार लई यही बद्दुआ निकली।